0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियूम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियोम चुन के रेवेर क्वारो बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरोटा लोका कामु पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो।